0: पंदरंजन सोए
1: जिन सेवया तिन पाया मान नानक गाविया गुणि निदान
0: गाविया सुनिया मैं रखिए भाव दुख पर हर सुख घर ले जाए
1: गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई
0: गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई
1: जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई
0: गुरा एक देव।

0: आवे चित गुप्त लिख जण है लिख लिख धारू बिचारे
1: गावे ईश्वर ब्रह्मा जी भी सोहन सदा सवारे
0: गावे है इंद इंदा सुन बैठे देवत्यां दर नाले
1: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
0: गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे
1: गावन पंडित पढ़ रखी सरे जग जग वेदा नाले
0: गावे है मोनिया मन मोहन।

0: सही तुद नो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।
1: और केते गावन से मैं चितना आवन नानक क्या विचारे।
0: सोई सोई सदा सच साहेब।

0: जापै जाई।
1: धर्म खंड का इहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम।
0: केते पवन पानी वे संतर केते कान महेश।
1: केते बर में काढ़त घड़िए रूप रंग के वेश।
0: केतिया करम भूमि।

जन के राम बसे मन माहे सच खंड बसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल जिथे लो लो आकार जिब जिब हुकम तिवे तिव कार जत पहारा धीरज सुनियार आहरण।

0: नमो मन मारने नमो रोग रोग नमस्तं शनाने
1: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इसे इसे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सत्तदानं सर्वं परनाशी नूपी रूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृत्त कर्ता अतो उत्तर दंग गंग ओघ
0: हरं परम परमेशं पुरुष पालं सदा सर्वदा सदा

पूर्ण पुरख पार कलासन जगत काल पुरख दिस रंग जाक जात पातन नाम आप रूप मी कान उस देख पुरख अवधूत अंगहीन भंग नाथ मेघ पुरख पार

0: इंद्र बाधे गंजे गादे सुभंग सर भागे सर्वा अनुरागी
1: भक्त स्वरूप है सिद्ध है सुख है कला कंपना से पृथ्वी और
0: पर्वत से सदा भोग स्वरूप।

0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्तं सर्वं मुक्तं नमो नरकनाशे सदैवं प्रकाशयन्नङ्गं स्वरूपे अपङ्गं विभूते
1: परमात्मा परमाते सदा सर्वसाते अग्राद्य स्वरूपे निर्वाद विभूते
0: नामितर भंगितर काम निर्भंगी स्वरूप।

आसमन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मदाम जल थल अमन दस वस भन जल थल महान दस वस बेअंत ओंकार आदि कथनीय नाद खल खंड ख्याल गुर बर अकाल जगात अनरंज बात अन टुट भंडार।

0: रूपेण रेखे समस्तल प्रणाम समस्तल प्रणाश गंजल नाम समस्तल निवासी
1: समस्त
0: प्रणाशी करी मुल्क निंदा समस्तल निवासी चक्रवर्ती चतर चक्र

0: नंदन साचर भूत भवक भवान जपेंगे।
1: गुरदापन
0: बार जतन पापन के बहु पुंज खपेंगे।
1: इंद्र
0: गिंद्र नाद बजाओ तर लोको राज करेंगे। परमेश्वर विष्णु सचिव पतांत फंसे जम फास परेंगे। दो लोचन मूंद के बैठ रहे भक्त ध्यान लगायो। ज्ञान सु बैठ के ऐसी ऐसी सुबह सुबतायो।
1: प्रभु पायो
0: पाहन पूज तरह सुरगा।

कह रविदास अकथ कथा बहु काए करी जै जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजै। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ। वडहंस महला तीजा घर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मन मैला सब कुछ मैला तन धोता मन अच्छा ना होए।

हर उत्तम हर पचंगा कड़ियाल मुखे गुरु ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चावक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चावक मन जिने गुरमुख जीतिया गड़ोकड़ा वै शब्द पावे अमे हा प्यो हर सपीतिया सुन सरण बाणी गुरु बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ विकड़ा जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन दे नराम उपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन धन सुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सुबस तुर लिखिया पा लिखते लिखिया कृत जड़ंदा चढ़ देहड़ घूड़ी बिखम लगाए मिल मगर मुख परमानंदा हर हर काज रजाया पूरे मिल समझना जंग व्याय जन नानक हर और पाया मंगल मिल समझना बधाई वड़हंस महला चौथा दे तेजनड़ी हर नवरंगिया राम गुरु ज्ञान गुरु हर मंगिया राम गुरु ज्ञान मंगिया कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया सब जन्म सफल किया करते हर राम नाम वखाणिया हर राम नाम सलाय हर प्रभ हर भगत हर जन मंगिया जन कह नाम सुन संतो हर भगत गोविंद चंगिया दे कंचन जीन सुवन्ना राम जड़ हर हर नाम रतन्ना राम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सुखणे गुर शब्द पाया हर नाम ते आया बड़ भागी हर रंग हर बने हर मिले स्वामी अंतर जामी हर नवतन हर नवरंगिया नानक गाने नाम जाने हर नाम हर पर मंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैकल गुर शब्द वस आया राम मन वसकत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेते कर सोहे हर प्रभु नारी हर रंगराती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया जन नानक नानक जन हर दर्श करत है कहत है बड़भागी हर हर त्याया देह घोड़ी जी जित हर पाया राम मिल संत गुरु जी मंगल गाया राम हर गाय मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग के गुण राम गाए मन पसवाए महारे गुरमती मन ध्याए जन नानक हर कृपा धारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया रागुण हंस महला पंजवा छंद कर चौथा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद गुरु मिलदा जी राम प्यारा राम तन मन दितड़ा बारो आरा राम तन मन दिता भौजल तन मन दिता भौजल दिता चुकी कान जमानी स्थिर थिया अमृत पिया रहा अमन जान शुकर लद्दा सह समदा हर का नाम धारा कहो नान सुख माने रलिया गुरु पूरे कौन नमस्कार सुन सज्जन जी मैं डे मीता राम गुरु मंत्र शब्द सब दिता राम सब त्याया मंगल गाया चुके मनवा देसा स्वरूप पाया कथन जाया सदा सदा संग वैसा प्रभ जी भाणा सचा माणा प्रभ हर तन सहजे दीता खो नंग तेजन बलहारी तेरा दान सवनी है लीता तो भाणा तामृतृप दखाए राम मंथी अठंडा सब तृष्ण बुझाए राम सब तस मंथी अठंडा अमर चूकी डंजा पाया खाओत खजाना सिख सेवक सब पंचन लाग लगे हों सतगुरु के कुरबाना निरपो भय खसम रंग राते जमका त्रास बुझाए जमकी त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक त्रिभगत करुण लिवलाहे पूरी आसा जी मनसा मेरे राम मोह निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद प्रभु सचड़ा हर सलाई कर सब कुछ करण जोग सतन रंड न कहूँ वैसी न कद हो वै सोख न कद हो वै सो गण रस भोग साधन महल समाणी जिन प्रभु जाता करम विदाता बोले अमृत बाणी गुणवंती आ गुण मा सारे अपने अपने कंत संभाल नाक लगे बिन जोगो सचड़ा फिर सलाई सब कुछ करने जोगो सचड़ा साहब शब्द पछानी आपे लय मिलाए सा धन फ्री के रंग राती विचो आप गुआए विचो आप गुआए फिर काल न खाए गुरमुखे को जाता कामन विच गुणी मंत्र भिन्नी मिलिया जगदीवन दाता सगुण राती सबन माते पेक अंक समाए सचड़ा साहब शब्द पछाणी आपे लय मिलाए जिनी अपना अकंत पछाण हों तिन पूछो संतान जाए आप चोड़ सेवा करे फिर सचड़ा मिले सह सुहाय फिर सच्चा मिले आए सच कमाए सच शब्द मन तन राति कद न रैंड सदा सुहागने अंतर सह समाधे फिर रहया भरपूरे वेख दूरे रंग माने सह सुहाय जिनी अपना कंध पछाण आहो तिन पूछो संतान जाए फिर पिछुनिया भी मिले जे सतगुरु लागे साचे पाए सतगुरु सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए अवगुण शब्द जलाए दूजा भाव गुआ सचे सचराती सचे शब्द सदा सुख पाया हो महंगई पराती फिर निर्माय सदा सुहागण सदा सुखदाता नानक शब्द मिलाए फिर पिछुनिया भी मिले जे सतगुरु लागे साचे पाए बड़हंस महला तीजा सुनो हो कंत महली हो फिर सेवा सद विचार अवगुणवंती फिर न जाने मुठी रोवे कंत विसार रोवे कंत समाल सदा गुण सार ना फिर मर न जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता सच्चे प्रेम समाए जिन्हें अपना फिर नहीं जाता कर्म पिदाता कबूड़े मुठी कुड़े यार सुनो हो कंत महली हो फिर सेव हो सद विचार सब जग आ उपाय ने आउन जान संसार माया मोख वाय ने मर्जन में वार वार मर्जन में वार वार बदे विकार ज्ञान हुनी मुठी बिर शब्द प्रेरणा पायो जन्म गुवाय रोवे अवगुण यारी झूठी फिर जग जीवन किसन वाय रोवी किसन रोई है रोवे कंध विसार सब जग आ उपाय ने आउन जान संसार जो फिर साचा